चेनिक चुगुल कसरता ब्रो वो चिन्नो गेन कुनी तो उसको इचप चिगे गोल से थी नहीं ले पेतू तक चुगुल खबो का मनुत इन कसर वे चुचन ये के सभी गोल से आगे मिन के सुए चनन को मुचे तने ने गन वो इगस रुद के म्याच को अब तीन देत ने तिने गुल रति को मनुत को इच चेनिक चुगुल कसरता ब्रो वो चिन्नो गेन कुनी तो उसको इचप चिगे गोल से थी नहीं ले पेतू तक चुगुल खबो का मनुत इन कसर वे चुचन ये के सभी गोल से आगे मिन के सुए चनन को मुचे तने ने गन वो इगस रुद के म्याच को अब तीन देत ने तिने गुल रति को नली लेन अमेरिका 505 चिमनिका 508 चिगसे ने बांधे के चांगी अग्रोडील 705 505 अनानियप ची तो दुजे ताब में से ताब ताजे फिल्म वेस्टर्न सीड कंपनी ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी टू द फार्मा।

0: चिचेनिक चुगुल कसरता ब्रो वो चिन्नो गेम कुनी तो उसको इचप चिगे गोल से थी नहीं ले पेटू तक चुगुल खबोगा मनुत इन कसर वो चुचन ये कैसे भी गोल से आगे मीन के सुई चनन को मुझे तने ने के नबो इगस रुद चम्याच को अब तीन दिन तीन यंगु लगती है को गोल के सुई चबुआने इन जाकी नेट अब जब मंगे में मैं उद चौथन को अराका WH11 अक हराका WH301 चित्तौड़ का सरता भी तुषित साइनी अब इबो का लगेंगा अक्टिव टेम गिट्योग असीगस Kambuni ta Western Seed kutunye geswek alagu Aminika 403 Tibi kasartane nuach asigas Agubu aniko gororon kunyalilin Aminika 505 Chimange memyanuagig agubu nruti chemyach Aminika 507 Chitinye mubik chigimin agunyalilin kuboto gororon in silage Aminika 508 Chigisini bande kichang agubu nruti chemiten baraga Min kusirin kasari ton barob tane nuach Keri ilegi baisin geswek chayanotin kubun Western Seed maize Rutegen Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV, Outlet Tagatugul, Nenegitenin, Entebu Tagatugul, Ibirsimet Kwa number 0705 505 505, Anani FG to do the tab, Meseta Taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
1: Taj FM, to get up calling.